अनि तपाईँ नपुपुमा पुनमनगेम गुणा याने कसपसन वरा किन्दाने आ या पसन पे नपु ओ इशु अनते नमरिंगा बगयो ओ यो मोगनते हम कोरारे यगो यंत मिनिसै